साई राम डियर लिसनर्स, भगवान हैज स्ट्रेस्ड ऑन मेनी ओकेजन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ ह्यूमन बॉडी. अकॉर्डिंग टू हिम इट इज अ रेयर ब्लेसिंग दैट इज कन्फर्ड अपॉन अस. इन टूडेज डिस्कोर्स बाबा स्पीक्स ऑफ हाउ वी शुड यूज द बॉडी टू रिडीम अवर लाइव्स. लेट अस नाउ लिसन टू अ डिवाइन डिस्कोर्स दैट भगवान बाबा डिलीवर्ड ऑन 17th of May 2000 ड्यूरिंग द समर कोर्स on Indian culture and spirituality in Vrindavan, Bangalore.

राम राम राम राम जी बोलो। सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो। सत्य नाम हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी बोलो। हरि हरि बोलो। हरि हरि हरि हरि हरि हरि जी।